0: कोई नाम जाने तेरा।
1: न तन जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नहीं जिते करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनी अर

उस मालक दा नौकर मुस्कुरा पिया। मुस्कुरा के किया अपने नौकर नू, हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा, लोहे दी संदूखड़ी नाल ओ किस तरह, कौन है मालिक ते नौकर? मालिक तां गुरु नानक साहब ते नौकर मरदाना। हैरान हो के पुछिया, संदूखड़ी दे नाल इहदा मन किस तरह जुड़िया?

चंगा फिर जोगीराज जरा ए दसो तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानू है तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगीराज ने सामने देखिया ती संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे भाई तेरी संदूकड़ी किथे। ते जोगी राज कहंदा है गुरु साहबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहब जी आस

गुरु साहबा ने उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे है, इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी।

भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। ए गल नानक।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई।

बहुत बुरा हाल है तेरे कपड़े पार्टी। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआ ने लुट लिया, मैं ता संत समझी पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली। मैनू जानू मार देन लगे सन पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथू भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वो संत नहीं, पता है वो कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

मैं तो मथा टेकी है कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनु देख लिया ते उची सारी अपने साथियां नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनु जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इं बयान करदे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने, सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे तो चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाए।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

जिड़ा नाम देव सामने बैठा सदा पे आए ना तुआड़ी वासली ओदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया। कहन लगा मेरी थैली दे, होर भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नु कुटन लग पए। ओ जड़ा पेखी संत सी अपना वड्डापन दसण वास्ते अपने आसन तो उठे, उन्हां लोकां नु कहन लगा नामदेव नु मारो ना, जे इन्हे माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनु सजा देगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के

पग बगले नू कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह कर दिया ने चलो पैना बड़े बड़े संत महापुरुष आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन कर दे वो सारिया मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नु संत समझ के पर बगला जिहड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के ते ओदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नू मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहंदे ने ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नू लुट पुट के खा जांदे।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसा आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनासरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है भाई, एक पैसे दा सच चाहिदा है ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा है। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन भाई, ऐसी वस्तु कदी बाजारा विच विकिया ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, मर्दाने आख्या भाई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। ता मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा है मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा है भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दम ही ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है, मरना सच है, इसे लिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुष्य जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा

बहु परपंच कर परधन ल्यावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी फैले। जेड़ी पापां दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नवेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तेनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नू भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदियां सोचदियां अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये धन उत्थे चलदा।

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई पड़ी प्राप्त मानस दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तां परमेश्वर दी भगती कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिना नू ए चंगे गुण प्राप्त हन भाई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

उतरे बड़े प्रसन्न हुए। भाई सहदे दा प्यार वेख के हिरदे नाल लाया, आख्या भाई दया सिंह देश नू मोरा इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू धन नहीं चाहिदा,

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोग मीठे साद, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे साब

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बांह फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावें दुख सहना पै जा, शरीर ते कष्ट जर सकदा, पर दुखीए दा दुख निवृत्त कर देंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता, पर भाई कमलिया बंदगी करन वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब का पाठ करता जाता। वजीर खां दे कन्नां विच जदों बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी ओ कोड़ी वजीर खान वर्गे जिन्हों का शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ ली बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखां दा तां प्यार ही इहो जिहा, भावना ही इहो जी, हिरदे विच परपकार दा बीज बोया हुंदा, इस वास्ते बां फड़ लई मैं। दुखियां दा दुख नहीं हो जरदे, रुड़दे जांदे दी बां फड़दे, पर मुख तो सत नाम जप के वाहिगुरू वाहिगुरू कह के फिर भी मन नीवा मत उची। आओ भाई सिखां दा, पर जिहड़ा सिख बन जावे भेखी सिख नहीं, विखावे वाला सिख नहीं, जिहड़ा अथिख अंदरों सिख है, जिहदे हिरदे विचों प्यार है, बस वो प्रगट ही नहीं करदा। वो तो कहिंदा ही नहीं, वो तो कहिंदा मैं अजे सिख बनिया ही नहीं, क्योंकि गुरु का मार्ग ही ऐसा है, गुरु दे पाए हुए पूर्णिया ते जिहड़ा सिख चलदा है, बस वो तो मन नीवा मत उची, कि जिन्हां ते गुरु बख्शिश।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ये पूर्ण सिख दी निशानी।

परंपरा बनाई। वो कहते ने बजर कुरैत हो जाए, पंजा प्यारियों के सामने पेश हो जाओ क्योंकि गुरु का रूप ने, मत शर्म करो, इन्हों के सामने आके बैठ जाओ ते कह दियो गुरु रूप खालसा जी मैथों रोमां की बेदबी होगी, मैनू खिमा कर दियो, ला दियो तनखा, गुनाहगार हां, लाओ सजा मैनू, पर मैनू माफ कर दियो, मैं अगों तो राह पै जावां, मेरी निगाह विच मैल आ गई, मेरे को बजर कुरैत हो गई, पर स्त्री पर पुरख संग हो गया, मैनू खिमा करो, मैनू राह पाओ, जे नहीं दसांगा पंजा प्यारे नू नहीं दसांगा, खालसी अगे नहीं रखांगा, गुरु अगे नहीं रखांगा, दोष अंदर रहेगा, चलता रहेगा, बलता रहेगा, बदता रहेगा, गुनाहगारी चलती रहेगी, नहीं गुनाह ते निगाह रखने की लोड़ है। और एक होर गल तुसा देखिया, घरां विच ते बाहर कुछ जानवर ऐसे भी होंदे ने जेड़े अपना आप छुपाउंदे ने, जिन्हां दे डंग विच जहर हुंदी वह अपने आप को लुका के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है साड़ी जहर के कारण करके संसार साडा दुश्मन है, असी डंग मारने वाले हैं इस करके अगले डंग चुकी फिरते हैं साडे खिलाफ, सप नू भी पता है, पिछू नू भी पता है, इन्हां नू पता है कि साडे खिलाफ डंग चुकी हुई है जिन्हां नू साडे कोलों खतरा है, ते फिर ये अख बचाउंदे ने, ध्यान देना, सप ते निगाह पै जावे ये कतराएगा, अगा पिछा होण दा जतन करेगा, पिछू हनेरे विच तां अपना दा लाउण दा जतन करेगा, लेकिन जे चानण कर दिओ ते भज के खूंजे च वड़न की कोशिश करेगा, उन्हूं पता है कि मेरे बारे जानदे ने मैनूं मार देणगे, बिल्कुल इसे तरह डंग मारन वाले जानवरां वांग जिहड़े दोष ने ना बुराइयां, यह भी मनुख नूं अग्ञान दे हनेरे विच गंगदियां ने, जे किते बंदा अपने आप ते निगाह मारनी शुरू कर दे, अपने आप नूं देखण दा जतन करे ना कि मैं की हां, मेरे अंदर काम कितना है, क्रोध कितना है, मेरे अंदर हंकार कितना है, मेरे अंदर निंदा कितनी है, ईरखा कितनी है, इन्हां नूं भजना पै जाणगी, इन्हां दोषां नूं घबराहट पैदा हो जाएगी कि तां बंदा जिस नूं असां डंगणा है तां वेख रिहा सन, यह डंग नहीं मारन देवेगा, यह जहर नहीं घोलण देवेगा, यह सुचेत हो गया, फिर यह जीवन विचों नठ जांदे ने, सिर्फ निगाह रखण की लोड़ है। भाई साहब भाई गुरदास जी, क्योंकि आप पूर्ण गुरसिख, गुरु के सामने अपने दोष रख देने वाले, गुरमत लैण वाले, दुरमत तजन वाले ने, वो अपने आप से निगाह रखते ने, ते सानू अपने आप से निगाह रखने वास्ते एक बड़ा प्यारा जिहा ढंग दसते, वो कहिंदे ने किरत घट नहीं बनना, गुनाहगार नहीं बनना, ते निगाह मारीए ते कुछ अंदर पिया नजर आ जाएगा, कहिंदे ने हो अपराधी गुनाहगार अपराधी, कहिंदे ने जिसने अपराध कर लिया होवे, दोष कर लिया हो, जिहदे कोल गुनाह हो गया हो, कहते एक मुलजम हों एक मुजरम हों, मुलजम हों जिसे इल्जाम दोष धरिया गया हो इसने हो सकता है गुनाह किया, लेकिन जिसल साबित हो जाए इन्होंने गुनाह किया फिर कहते मुलजम नहीं मुजरम है, ये को जुर्म होया है पक्की गल, मुलजम तो मुजरम हो जाता है, जेड़ा बंदा मान ही लवे ना कन्फेस कर लवे वह कहता जी मैं मुजरम हाँ, वह यही कहता मैं मुलजम हाँ, मुलजम तो उसके इल्जाम लाया जाए, मुजरम हों जरा मन लवे या जिदा साबित हो जाए। भाई साहब कहते ने मुजरम बन के गुरु के चरणा विच गटहरे च खड़े हो जा, मन लई आओ अपराधी गुनाहगार हो, बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो, कई बार ऐसा भी होया होगा गुनाह मैं कीते नहीं या मैं इतो होए नहीं या मौकिया नहीं मिले, कई तरह के गुनाहगार ने, एक वो होंगे ने जेड़े कर लेंदे ने फड़े नहीं जाते, एक वो होंगे ने जिहड़े करदे ने फड़े जांदे ने सजा मिल जाती, एक वो भी होंगे ने माफ करना जिहड़े करना चाहते ने दा नहीं लगा, अंदर गुनाह पल रहा है, अंदर गुनाह की बिरती चल रही, घट गुनाहगार हो भी कोई नहीं, दा नहीं लगा लेकिन करना चाहता है, तिने ही गुनाहगार। भाई साहब कहते ने हो अपराधी गुनाहगार हो, बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो, जुआ एक खेडदा है पिया फड़िया गया, एक खेडदा है पिया नहीं फड़िया गया, एक वो जिहड़ा खेडण नूं जी करदा डरदा नहीं पिया खेडदा, उत्थे दा उत्थे ही खड़ा, कोई वखरा नहीं खड़ा उन्हां दा, एक शराब पी रहा है डिग रहा है, एक शराब पी के मुंह च खुशबू घोल लैंदा है पता नहीं लगन देंदा, आके छेती नाल सौं जांदा है नहीं पता लगा, एक वो है जिहदा शराब पीण नूं

نام دے نال صدق بندا ہے، نام میٹھا لگدا ہے، اس لئی میرے نال چلو ہوتی مردان۔ سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں، انہاں کول چل کے بینتی کردے ہیں، کیونکہ مہاپرکھ تاں وہی ہے جیڑا گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدا ہے، جگتی وچ مکتی کر دیندا ہے۔ राजा बड़ी निम्रता दे नाल सिदक दे नाल महापुरख बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले पास गया। ए ओ महापुरख सन जिहड़े जवानी विच फौज विच भर्ती सन, आप दी समाधि लगी रही सारी रात, ड्यूटी ते नहीं जा सके, इन्हां दी थां ते ड्यूटी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने दिती। ते जदों सवेरे गए ना, मन विच सोचदे हन भई नौकरी तो जाए ही जाए, पर अंग्रेज का राज है, पता नहीं दंड की मिलेगा, सजा की मिलेगी। ते जलो अगे गए तो अफसर बैठा होया सी, उठ खड़ोता अपनी खुशी तो, दस्त पंजा लिया ते कह लगा करम सिंह मैं सारी रात सारिया नू चेक कीता, पर जो ड्यूटी तू दिती है वो होर किसे नहीं दिती। उच्चारण करो श्री सात संगत जी, कम से कम अगे बैठे होया दी बिरती जरूर जोड़नी चाहिए है। समाधियां ला लो, ये गर्मी तुहानू लगेगी ही नहीं, जदों अमृत ठंडा पवेगा ना इस दे विच, बस जुड़ जाओ गुरु दे चरणां विच, उच्चारण करो श्री। एक दो मिनटां विच मैं आपनू बाणी दा प्रताप दसना। ए ओ महापुरख जिन्हां दी थां ते आप कलगीधर पातशाह जी ने सारी रात ड्यूटी दित्ती। राजा जदों पहुंचिया, महापुरखां ने आख्या जल पानी छका के संगत विच ही रह चलो। महापुरख संगत विच आप भी पहुंच गए, समाप्ति होई कीर्तन दी ते सुख शांत पुछण लगे। ता राजा रो पिया, महाराज कोई निरंकार ने राज भाग दुनिया दे सुख बख्शिश कीते सी, पर नाल दुख भी बड़ा वड्डा ला दिता, पगंदर दा फोड़ा निकला है, ते आप कृपा करो। महापुरखा ने हाथ कीता गुरु ग्रंथ साहब वाल, ओ भले पुरछा ठीक तो उन्हें करना है। शरब रोग का छारे जपो, शरब रोग का औखद, साडा बच्चा बीमार होवे किवें डाक्टर वाल अखां जुड़ जांदियां, कोई मुकदमा पै जावे चंगे तो चंगे वकील वाल ध्यान जांदा है, पर ओ तनता दे योग हन जिन्हां दे हाथ जुड़ जांदे हन गुरु ग्रंथ साहब अगे। महाराज तू कृपा कर। महापुरख कहन लगे राजन बाणी दे विच सारे ही अमृत हन, विच बाणी अमृत सारे, ते पंज पाठ जप जी साहब दे रोज करेगा। कह लगा महाराज मैं जरूर करांगा, क्योंकि मौत सामने दिखाई दे रही है। महापुरखां ने कहा भाई जल विच खलो जावी अमृत वेले, ते पंज पाठ जप जी साहब दे करनियां नूं उतना चिर उस फोड़े ते जल मलदा नहीं, गुरु कृपा करेगा। प्यारी सात संगत जी, महापुरखां दा वचन मनना, क्योंकि गल तां वचन मनन नाल है ना। अमृत वेले उठ के राजे ने जो नितनेम आरंभ किया, 40 दिनां दे अंदर अंदर पता ही नहीं लग्या फोड़ा कदे निकलिया भी सी के नहीं निकलिया। उच्चारण करो श्री, तिस साहेब की टेक सारे जपो, टेक गुरु के सिख नू बाणी दी है, सिख दा साहेब है धन गुरु ग्रंथ साहब। एक बार प्यार नाल आखो धन गुरु ग्रंथ साहब, ते फिर क्यों ना भाई दुख

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला है, गुरु वाला है, जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लागे पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां भी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा अवगुण को न चितारदा गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल